जैसी जल में है कमल निरालम, मुर्गाई नैसाण सुरत शब्द पव सागर तरिए।

अलम मुर्गाई नैसाणे सुरत शब्द पव सागुर तरिया नानक नाम वखाणे सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शनां परसेआए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा हांद साहो जिस पास बहिठिया सोहिए सब नांदा विसाहो सतनाम

हे पवित्र शब्द सतगुर अपनी सुनी अरदास कारज आया सगला रास जा सतगुर के चरणों में अरदास की फिर सतगुर ने अरदास सुनी जेड़ा अरदास सुनता है जेड़ा अपने सिख की लाज रखता है फिर उसके चरण तो के पीड़ नूं क्यों ना मन करे कई कहंदे ने अरदास की पर अरदास पूरी नहीं हुई पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का महावाक है बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास अरदास कदी बिरथी नहीं जाती श्री आनंदपुर साहब हजारां संगतां दर्शनां वास्ते आंदियां हन इन्हां संगतां दे विच एक पति पत्नी और एक इन्हां दी छोटी बच्ची वो भी आए हैं एक महीना श्री आनंदपुर साहब रहे इस बच्ची दे माता पिता ते चले गए पर ए ना गई ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे महल माता साहब देवा दे कोल ए बच्ची रहन लग पई समा बीतिया वसाखी वाले दिन केसगढ़ की पवित्र धरती से धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अमृत की दात दी इस बच्ची ने भी अमृत छकिया पहला नाम बसंत लता सी अमृत छकिया ते बसंत कौर बन गई श्री आनंदपुर साहब के किले नूं जिस वक्त घेरा पिया और गुरु साहबा ने आनंदपुर साहब का किला जिस वक्त छड़िया सरसा नदी पार की सरसा नदी पार किया गुरु साहबां का सारा वही इत्थे आके विछड़ गया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वड्डे साहबजादे ते चालीक दे करीब सिख एक पासे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे अते माता गुजरी एक पासे सारा परिवार और सिख विछड़ गए इस समय जिहड़ी ये बसंत कौर सी इहदे हाथ विच भी नंगी कृपान है कमर कसा कीता है ये भी अपने सिंह वीरां दे नाल दुश्मनां नाल लड़दी हुई नदी पार करदी है ठोकर लगी थले डिग पई सिपाही पकड़ के समुंद खान दे कोल लै गए समुंद खान ने कहा बसंत कौर ना तेरा कलगियां वाला इत्थे आना ना कोई तेरा सिख भरा मेरी बेगम बन जा राज करेंगी पर बसंत कौर ने कहा समुंद खान मैं कलगियां वाले पिता का अमृत छकिया मैं प्रण किया दुनिया विच मेरा कोई पति नहीं होगा अपना जीवन कलगियां वाले पिता दे लेखे ला दिता है बसंत कौर नू कैद किया गया तसीहे दिते लालच दिते पर बसंत कौर डोली ने आखिर एक कैद खाने विच बसंत कौर नू कैद किया गया समुंद खान उस कैद खाने विच आया बसंत कौर नू कहन लगा बसंत कौर तेरा कलगियां वाला गुरु चमकौर दी गढ़ी विच मारिया गया हुण तेनू बचाण वाला कोई नहीं समुंद खान अगे होया बाहां फैलाईयां हन बसंत कौर नू पकड़न वास्ते पर बसंत कौर थड़े तो एकदम उठ के खलोई गरज के कहन लगी ओ दुष्टा परा हो जा ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया जद कहा ओ देख मेरा कलगियां वाला पिता आ गया है उस वक्त बसंत कौर नू प्रतख दर्शन उस कैद खाने विच हो रहे हैं ते समुंद खान मानो पत्थर दा बुत हो गया हिलजुल नहीं सी सकदा फिर इसने
बेनती की बसंत कौर मैनू बख्श दे मैं भुल गया। ते बसंत कौर ने कहा खिमा मंगनी है ते मेरे कलगियां वाले पिता कोलू मंग। फिर इस मुंद खान ठीक होया बसंत कौर दे पैरां दे मथा टेकया एक महीना कोल रख के सेवा कीती। जा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज लखी जंगल पहुंचे फिर बसंत कौर नू 100 सवारां दे नाल सतगुरां दे कोल भेजिया सास। यह है अरदास और गुरु दे प्यार दी शक्ति। आओ आपां भी गुरु ते भरोसा रखिए हर दुख वेले सतगुरु साडी भी इसी तरह सहायता करेंगे।

जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह है सब त्यावह तुद जी हर सच्चे।

तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जानाए हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए, तू कर कर वेखै है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला।

कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव किय, वेद राज ब्रह्मा जूथिय, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजा।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता, किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तुजा पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़िल। सुने गुंग जो याही, सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार, चौपई को कहै चौपई। संबत सत्रह है सहस पणिजै, अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव सुधि अष्टमी रववारा, तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधा।

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस अधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो एह वस्त तजीने।

मन चाहु पया प्रभ आगम सुनया हर गाओ मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया मन चाहु पया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए गुर चरण लागे दिन सुभागे आपना पिर जापए अनहद बाणी गुर शब्द जानी

तित कर गावो सोहेला शिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला हाँ वारी जित सोहेलै सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दाते कमण सुमार। सज्जन आसीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल घर घर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला शै घर शै गुर शै उपदेस गुर गुर को वेस अनेक। बाबा जय कार करते कीरत होए सो का राख वडाई तोए रहाओ। वे सोए चसिया

रहाउ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त नना एक तोही, सहस पद बिमन नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध विचलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मह चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत सुपावै सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारिंको, होए जाते तेरै नाए वासारा। गौड़ी पूर्बी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्ब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाउ साकत हर रस साधना जाने, आ तिन अंतर हों मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चलै चुबै दुख पावहै, जम काल सहै सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम सुमाणे, दुख जन्म मरण भाव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है।

0: सुख पावो
1: कल क्लेश तन माय मिटा
0: सिमरो जास विसंबर एक
1: नाम जपत अनंतर एक
0: बेल प्राण सिमर सुध आखर
1: इने राम नाम के आखर
0: इनका एक जिस जीव सावे
1: काकी महिमा घनी हारे
0: काकी एके दर्स तुहारो सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम
1: के मन विश्राम रहा
0: प्रभ के सिमरन कर बना बसे
2: के सिमरन दुश्मन
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
2: के सिमरन दुश्मन टरे
0: प्रभ सिमरत कुछ बिगड़ न लागे
2: के सिमरन अंदर जागे
0: प्रभ के सिमरन भव न व्यापे
2: के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध के संग
2: सर्वनिदान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद
2: के सिमरन ज्ञान ते अंत तत् बोध
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
2: प्रभु के सिमरन बिन से दूजा
0: प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी
2: प्रभु के सिमरन दरगे माने
0: प्रभु के सिमरन होए सुफला
2: प्रभु के सिमरन सफल फला
0: से सिमरै जिन आप सिमराए
2: नानक ताके लागो पाए
0: प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा
2: प्रभु के सिमरन उतरे मुचा
0: प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे
2: प्रभु के सिमरन सब कुल सुजे
0: प्रभु के सिमरन नाहि जम त्रासा
2: प्रभु के सिमरन पूरे आसा
0: प्रभु के सिमरन मन की मल जाए
2: अमृत नाम रित माहे समाए
0: प्रभु जी बसे साध की रसना
2: नानक जन का दासन दसना
0: प्रभु को सिमरन से तन बनते
2: प्रभु को सिमरे से पत बनते
0: प्रभु को सिमरन से जन परवान
2: प्रभु को सिमरे से पुरख प्रदान
0: प्रभु को सिमरन से बह मोता जे
2: प्रभु को सिमरे से सब के राजे
0: प्रभु को सिमरे से सुखवासी
2: प्रभु को सिमरे सदा विनाशी
0: सिमरन दे लागे जन आप दयाला
2: नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरन से पर उपकारी
2: प्रभु को सिमरे ते सत मिले
0: प्रभु को सिमरन से मुख सुहावे
2: प्रभु को सिमरे ते सुख बिहावे
0: प्रभु का सिमरन तिन आत्म जीता
2: प्रभु
0: का सिमरन तिन प्रभु को सिमरे तिन आनंद कनेरे संत कृपा ते आंदन जाग
2: नानक सिमरन पूरे पाग
0: प्रभु के सिमरन कार्ज पूरे
2: सिमरन कबू न चूरे
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी
2: प्रभु
0: के सिमरन नेह चलासन
2: प्रभु के सिमरन कमल बकास
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार
2: प्रभु सिमरन कांत न पार
0: सिमरे से जिन जिन को ब्रह्मया
2: नानक तिन जन सर नहीं पिया
0: आज सिमरन कर भगत प्रगटाए
2: हर
0: सिमरन पैसे जति दाते
2: हर
0: सिमरन तारी सब तरना
2: सिमर सिमर हर कारण करना
0: हर सिमरन क्यों सगल कारा
2: सिमरन में आप
0: कर के बाज से आप जाया नानक गुरमुख हर सिमरन

0: मात पिता सुतमी इतना भाई
1: मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई
0: जय महाप्यान दूध जम दले
1: केवल नाम संग तेरे चले
0: जय मुश्किल होए अत पारी
1: हर को नाम खिन माहे उतारे
0: अनक पुंचन करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पाप पर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक पावो सुख नेरे
0: सद शिष्ट को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोड़ी बनना परे
1: हर का नाम जपत निस करे
0: अनक माया रंग तिखना बुझावे
1: हर का नाम जप तक आवे
0: जे मार्ग ए जात अकेला
1: हर नाम संग होत से हिला
0: ऐसा नामन सदा ते आइए
1: नानक गुरमुख परगत पाइए
0: छूटस नाही कोल लख बाहे
1: नाम जपत ते पार पराए
0: अनक बिघन जाए आए सिंगारे
1: हर का नाम तत्काल उतारे
0: अनक जोन जन्मे मरे जाम
1: नाम जपत पावे बसराम
0: हो मैला मल कबू न तोवे
1: मन का नाम कोट पाक होवे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग
1: नानक पाइए साध के संग
0: जे मार्ग गने जाए न कोसा
1: हर का नाम हुआ संतोषा
0: जय पैने मह अंध गुबारा
1: हर का नाम संग उजियारा
0: जय पंत तेरे को न स्वानो
1: हर का नाम ते नाल पछानो
0: जय मां प्यान तप्त बहु काम
1: हर के नाम की तू ऊपर शाम
0: जय तीर्था मन तुझ अकरखे
1: नानक हर हर अमृत बरखे
0: भगत जना के बरतन नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर के नाम दास की ओट
1: हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर भगत सार कुमार
0: हर जन के हर नाम निदान
1: पार ब्रह्मजन की नो दान
0: मानता रंग रते रंग एके
1: नानक जन के बिरत
0: बिरके हर का नाम जन को मुख जुगत
1: हर के नाम जन को त्रिपत भुगत
0: हर का नाम जन का रूप रंग
1: हर नाम जगत का परे न पंग
0: हर के नाम जन की वड्याई
1: हर के नाम जन सोपा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग
1: हर नाम जगत का छनाई योग
0: जिन राता हर नाम की सेवा
1: नानक पूजे हर हर देवा
0: हर हर जन के मालिक जीना
1: हर तन जन को आप्रभ दीना
0: हर हर जन के ओट स्थानी
1: हर प्रताप जन अवर न जानी
0: ओत भोजन हर रस राते
1: सुसमाग नाम रस माते
0: आठ पै जिन हर हर जपे
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपे
0: हर के भक्त मुक्त बहु करे
1: नानक जन संग के ते तरे
0: पार जते हर को नाम
1: काम ते हर हर गुणगान
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिद्वसे
1: संत प्रताप दुख सब नसे
0: संत का संग बड़ भागी पाए।

सरलीकृत साध्य संपटे सुज्ञान सा संसहोतन वेरा साध्य सहे गोपर जतन नानक साध की शोभा समाए समाने साध्य संसदा कर कुले

बरसावे, जिस तन ते सब को बरसावे, साध के संग शोभा सुरदेवा, साध संग अमृत गुण गायन, नारद साध के संग सफल जनम,

0: ज्ञानी का बड प्रताप,
1: ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई
0: है, हम ज्ञानी को बल बल जाइए,
1: ज्ञानी को गोजे में
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ज्ञानी की कीमत नानक
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे,
1: ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश,
1: ज्ञानी का कथिया न जाए,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ज्ञानी की मित कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी

0: सब को ज्ञान
1: जो बरना में जपे पुनाम
0: जपे तिसकी गत होए
1: सांग पावे जन कोए
0: कर कृपा अंदर उतारे
1: अस प्रेत मुक्त पाथर को तारे
0: औखद नाम
1: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
0: हो चुप किते ना पाए धर्म
1: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिसके मन पाप ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सत राम दास
0: आत्म राम तिस नदरी आया
1: बाद उत्तर भजन पाया
0: सदा निक निक हर जान
1: सो दास कर गए परवान
0: अपनी दास को आप कृपा करे
1: जिस दास को सब सो जी करे
0: सगल संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: अभी आ गया आत्म हितावे
1: जीवन मुगत सो उपहावे
0: ऐसा हर तैसा उस सोग
1: सदा नंद तह नहीं वियोग
0: जैसा सुवन तैसी उस माटी
1: जैसा अमृत तैसी बेखटी
0: जैसा मां तैसा अभिमान
1: जैसा रंग तैसा रजान
0: जो बरताए साए जुगत
1: नानको पुर के ये जीवन मुक्त
0: ब्रह्म के सगले ठाओ
1: जय जित का रखे तैसा तन
0: आपे कन करावन जोग
1: कृपा वे सोई फल होग
0: सो आप होए अनंत तरंग
1: रखे न जाए पार ब्रह्म के रंग
0: जैसी मध्य तैसा प्रगा

0: सोई करावे,
1: इसके हाथ होए ता सब किछले,
0: जो किस पावे सोई करे,
1: अनजानत भिख्या मह रचे,
0: जे जानता अपन आप बचे,
1: पर मैं भूला दे दिस्तावे,
0: ये मुख में चार गुण फिरावे,
1: पर कृपा जिस अपनी भगत दे,
0: नानक तेजन नाम मिले।

0: जो जानी में जो वरवंत आपस को करवंत कहावे दान पूर्ण का जो करे गुमान कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे धनवंता होए गर्ववावे वो लश्कर मानक ऊपर करे आस सत्य आप जाने बलवंत इसे न बदे आप हंकारी गुर प्रसाद जाका मिटे विमान कर्म करे हो दारे
1: पावे सगले बरतारे
0: अनिक तपस्या करे हंकार
1: अनिक
0: जतन कर आत्म इंद्र वे
1: को कैसे गवे
0: आपस को जो पला कहावे
1: से पलाई निर्णावे
0: सर्व की रेम जाका मन होए
1: नानक ताके निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कुछ होए जब जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्दन में फिरता
0: जब धारी को वैरी मीत
1: तब लग ने चला ही चीता
0: जब लग मोह मगन सगमाए
1: तब लग तर नाए देश जाए
0: कृपा से बंधन टूटे
1: दुर्पसा नानक हो छूटे
0: सहस कटे लख उठावे
1: रतनावे माया बचे पावे
0: अनिक पोग भिख्या के करे
1: नातक तावे खपका मरे
0: बिना संतोष नहीं को राजे।

0: सपने रंग
1: सपे दो सब के संग
0: जे देखे करे विवेक
1: आपे आपे अनेक
0: हरे रविंद से आवे न जाए
1: ज्ञान सधैर्य असमाय
0: आप देशे समझे
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आप किनो आपन विस्तार
1: सब कुछ उसका करने हार
0: उसते पीन को किस होए
1: साथ अंतर एक सोए
0: अपने चलित आप करने हार
1: तो करे रंग पार
0: मन में आप मन अपने माए
1: नानक कीमत कहना जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी
1: गुरु प्रसाद के नेम ख्याने
0: सच सच सब सब कीना
1: बोल बदे कन बर ले जीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: आप सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी वाणी
1: गाकर सुनी सर्व मुख्याने
0: पवित्र पवित्र

0: जस जे बदन रात करे भगत आत्म के चाए जो हुआ हो सो जाने इसकी महिमा कौन बखानो
1: इसका गुण एक

0: राख्यो मन माए,
1: सार रोग नानक मिट जाए।
0: जिस धन को चार कुंठ उड़दावे,
1: सो धन सेवा ते पावे।
0: जिस सुख को नित माछे मीत,
1: सो सुख साधु संग प्रीत।
0: जिस सोवा को करे पले करनी,
1: सो सोवा पे धर के सनी।
0: अनिको पावी रोग न

0: कम राखो मन माए
1: जम जम के दिल बिचाए
0: आप जपो अबरा नाम जपावो
1: सुन के रहत कत पावो
0: सार पूत सत सत हर को नाम
1: सह सवाय नान गुन गाओ
0: गुन गावत रुद्र स्मैल
1: हिस जाय हो मैं बख फैल
0: होए अचिंत बसे सुख
1: नाम सात ग्रासा नाम समाल
0: छाट श्यान सगली मना
1: सा संग पावे सतना
0: हर पूंजी सत करो बेहार
1: इहा सुख दर्द जयकार
0: शरण निरंतर एको देख
1: और नानक जाके मस्तक लेख
0: एको जप एको साला
1: एक सिमर एको मना है
0: एक कस के गुण गाओ अनंत
1: मंतन जप एक भगवंत
0: एको एक एक हराप
1: पूरन पूरे प्रभ्याप
0: अनेक विस्तार एक ते पे

0: प्रेसिडेंट सोजी पाए गर्दन पे अपने अब भगवंत सब लोग पूर्ण पत पाल जैसी अगर ऐसा कर्म चार गुण देख से समाए गुरु प्रसाद नाम सुख पाओ गुरु प्रसाद वेद वेद प्राण सिमरत में ससेल सुन खतर में एक आम डोल का बुना डोले मोल न पाइए गुणे मोल धारियो स्वामी ओत मोत नानक ते में उपसास सात जना के हृदय सब धर्म सर्वे अपि राम संग रचन सात वचन साधु सब कहत करण करम नान प्रभु जाने नानक दर्शन देख सब होई
1: आप सत किया सब सात।

0: नैना पे खनहारा आपन जैसा भी सुना
1: खेल
0: कहो कि ने कश करा आपे जाने अपने जी की ओद बोत अपन संगराज दूसर होए तो जी पाए गुरु प्रसाद नान

नाथ सहति बेहतर प्याण चौदह रतन कालियन कर चल के आना लैने तरियन छतर से रसमान पेड़ छके आना।

तन जन जय कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जिन परस्यो, से जन्म मरण दोहो थे रहयो। तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर पयो, हर गुर नानक जिन।

परगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म बलियो चिराग अंधियार में सब काल उदरी एक नाम धर्म परगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म।

0: नमस्तुल्पणामे समस्तुल्पणासे
1: गंजुलनामे समस्तुनिवासे
0: निकामं विभूते समस्तुल्स्वरूपे
1: सुधर्मं पणासि सुधर्मं विभूते
0: सदा सच्चिदानंद सत्रंगपणासि
1: करी मूल कुनिंद

0: पर पुंछ कपेंगे,
1: सास मुख पर सन विरेचक सतर सबे अवलोक चुपेंगे,
0: मानव इंद्र का चंद्र नराधव जोन तो लोक राज करेंगे,
1: कोटि स्नान जाति गदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे,
0: ब्रह्म है सब सच पर अंत विसर।

0: तुमरा लगाना जाए पसारा के फिर सजा प्रथम संसारा
1: ताके
2: काल आए है
0: एक

0: माता कंस करा पूर्ण सब राता
1: किल बिक सकल देखो हरता दुस दोखियन को शय करता
0: सिय सजब दे दिया ला पूर्ण करा गंत स्काला
1: मन बाचक फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई अड़ल
0: जो यास रसना पावे स्ने मोच लटता आवे।

0: कीजे जिद अंत पछुताइए।
1: सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले।
0: नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले।
1: अगम गोचरा तेरा अंत ना पाया।
0: तू ना पाया किन्ने तेरा अपना आप तू जाने।
1: जी जन सकेल तेरा क्या को आख वखाणे।
0: आखे ता वेखे सब तू है जिन जगत उपाया।
1: कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत ना पाया।
0: सुनर जन अमृत खोजते सो अमृत गुर ते पाया।
1: पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया।
0: जी जन सब तुद उपाय एक वेक परसन आया।
1: लाभ लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया।
0: हे नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया।
1: भक्ता की चाल निराली चाला निराली भक्ता केरी विकम मार्ग चलना।
0: लाभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना।
1: कन्हो तिकी वालो निकी एत मार्ग जाना।
0: सादी जिनी आप तजिया हर वास।

0: माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है।
1: मनो क्यों विसारी है एवर दाता जे अगर में यहाँ पहुंचावे।
0: उसनु कहे पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे।
1: अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है।
0: नानक एवर दाता सो क्यों मनो विसारी
1: है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया।
1: करता खेल परवार पला पाया।
0: लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया।
1: ए माया जिधर विसे मर उपजे वो तुझ जलाया।
0: कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया।
1: हरे आप मुलक है मुल ना पाया जाए।
0: मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए।
1: ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सौंपिए विचो आप जाए।
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।
1: हर आप मुलक है पाग तिना के नानका जिन हर पल।

0: पिए हर रस बहुर नतिस ना लागे आए। कहे नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए।
1: मेरे हर तुम में ज्योत रखी
0: हर
1: तू जग में आया
0: हर ज्योत रखी त

0: तुद कर्म कमाया,
1: के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया,
0: जिन तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया,
1: गुर प्रसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया,
0: नानक के शरीर परवान हुआ जिन सतगुरु से उचित लाया।

0: मार्ग नीमन गारे
1: पच पसुन ज्ञान राधव सर्व सबे सबको प्रीत पारे
0: जल में तल में पल में कल के नहीं कर्म बिचारे
1: दीन दयाल दया नि दुख देखत है पर देत न हारे
0: दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल डारे
2: कांड कांड प्रचंड बहार
1: पूर्ण प्रेम की प्रीत संभारे
0: न पाए सके पद्मा पद

0: पूरण प्रेम प्रभाव बिना पत्थर शिशिर पद्मा पत पाए
1: आनंद गाद द्वैक सपूत पवेक पवान पे है
0: आत्महीन आत्मा पदा कदो अचित रचे है
1: लोगन के करता हरता जल में थल में परता प्रभु है
2: दीन दयाल दया कर श्री पद सुंदर श्री पद मा के है
1: काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न पे है
2: देव हीन सुदेश मोतर

0: जाके बस खान सुल्तान, जाके बस है सगल जहान,
1: जाका किया सब किछ होए, तिसते बाहर नाही कोई।
0: कहो बिनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निभाए रहाओ।
1: सब देउ जाका दरबार, सगल भगत जाका नामदार।
0: सर्व व्यापत पूरन तनी, जाकी शोभा घट घट बनी।
1: जिस सिमरत डेरा है, जिस सिमरत जम किछ ना कहे।
0: जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे।

0: माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा
1: गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव बंदित सहोदरा
0: गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा
1: गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा
0: गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मजन अपरंपरा
1: गुरुदेव कर्ता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा
0: गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उद्रा।

ठाकुर तुम पैरदास जियो पिंड सब तेरी रास मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में सुख कने कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र तारी तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए फिरंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे आय कर नौने दया वै ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी पंजां प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई ते गवाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बन बन कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी किसां सुआसां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान।

कछ आराम पार न सूज, सगल पवन के नायका, एक छिन दर्श दिखाए जी। रहाओ मलिन पई मत माधवा, तेरी गत लखी न जाए। करहो कृपा प्रम चूकाए, मैं सुमत देहो समझाए। जोगी सर पावह नहीं, तौ गुण कथन अपार। प्रेम भगत कै कारण, कह रविदास चुमार। सो कहो टल गुर सेविय, अहनिस सहज सुपाय। दर्शन परसे आए गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटीय। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांद साहो। जिस पास बहिठिया सोही है,